0: जी कुछ इनकिन जी, जी कुछ इनकिन जी
1: ए लेगर जस दिग हुए गुर
2: नो हेट सी हनी नो हेट सी हनी
1: न तर ता को
0: एचुता को कोटी एचुता तने कोटे
1: Look at her.